कौन कौन नीचे कुछ जुड़ा पकड़ने हो पढ़ना और जंगा चीन टोंगो वाकान चंगा खोल लो आवाय वन कारवा जंगा जगह खोले रेंगो चीन टोंगो वाकान जी।